Oh my god, look! How cute! How cute! वैसे विक्की रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं, तुम उसके करीब जाओ। चलो यार, मतलब जॉर्ज।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।